भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

करो हरी जगत जगतारे भजन करो हरी जगत जगतारे भजन करो।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको या तो जला देते हैं।

मूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें रहे उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, भैरव जी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

बाते मुचानी पहला तिरदूषण बीमारी ध्यान से समझो नर और नारी सबके हित में बात मुचारी दर्द को साचो झूठो।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लालाजू, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लालाजू, का इतने ही जा रहे थे ना, एक महीने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
2: अरे भौजी, मोई ना सुनो, अब वो कितनिया के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कितम के नीयत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे लालाजू, आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी, ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गए कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
1: सो बास का कह रहा लाला जू, घर को पत्ता, घर को ना घाट को?
2: अरे बा काना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
2: हाँ, सो अब हमने बात सुनी तो है नी, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू?
2: अब बस भौजी तना

0: रहे थे वो एक जने हमें बता रहे थे भी बड़ी बता तो इन्होनी तरह से रहती, लेकिन हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाज में जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो तुम्हें कारखो मत सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो बज्जे सुन लेते होते उनमें मन ना लगाते।
0: अरे भोजी तुम केवे को मतलब का है कुन में उतर के तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो
1: मैं तो जय कह रही तुम जो ही कर रहे हो और बाहर ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
0: अब भोजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बना ही ली।
1: हाँ ये राम भाई तुम्हें तो खूब आते है वो, अब बना लो।
0: अब भाई तो कर रहे हैं भोजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
0: अब जी सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला तुम तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
0: अब क्या भाजी जब काम करे तो भड़ना जी, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख गए जैसे बन जाए ना पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
0: अरे भौजी जब अपन पूरी तरह से जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुनो कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाए।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो तो अच्छो हो जा।
0: हाँ कोनो काम अगर अपन अच्छो घुल मिल के करें भाई मिलोच से तो हमने के इतना भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा क्या कह रहे है क्यूँ मैं भिड़ जाओ तो मैं क्या मैं और मुँह पोत दू मैं तुम तो नेक और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
0: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
1: का कह रहे लालाजू चाटा गल जे, मैं देखा तुम्हें ये हो गई तुम्हारी अब।
0: अरे भौजी तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैं देख तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ले।
0: अब तो सुनाते है इतनी तेज कहते हैं मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लालाजू?
0: कछुनी जब कह रहे ऐसे कह रहे थे कि अब बता तो करूँ काम है, समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू तुम चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे तो मालूम है मैंने खुद सुनो तो।
0: अब लेकिन तू भोजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लालाजू तू जाने हैं?
0: आओ उतने तो ठाड़ी सजी
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए देता हूँ।
0: अरे मैं सब जाना आई जी मुही ने सज बज के बात मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लालाजू झूठी कह रही?
0: अरे भाजी कछुनी अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बता देता हूँ, अब मुझे अनजाने होते अब मैं टेम हो रहा हूँ वो तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लही है, लेकिन टीके लाने तीन चीजें जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
0: अच्छा अमृत जल बनाने आओ?
1: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने आते, वो कैसे बना थे?
0: हाँ
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो
2: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो चाहे केला हो जाए वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
0: अच्छा
1: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो कै दिन के लाने? तीन दिन के लाने ठीक है लालाजू, आ रही समझ में?
0: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से यहाँ जा रही।
1: कहा कह रहे लालाजू ने कम तरीका से आ रही?
0: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिन के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब सुबह चमचा को ऐसे घुमाने
0: कब जी कब हड़िया को नीचे करने के ऊपर करने?
1: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जारत के बाहर में गुठला ना पड़ जाए सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
0: अच्छा ईलंग और उलंग?
1: हाँ सुबह एक ही मिल जाए है तीन दिन में, फिर उके बाद लालाजू हो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बन गो अपनो जल जल बन गो।
0: हाँ
1: अब अमृत वो बनाने अपन को अमृत मिट्टी
0: हाँ।
1: के लाने तुम्हें जो करने पड़े कि एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसे इतनी सी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो एक बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले ऊके ऊपर गोबर बिछा दे फिर ऊके ऊपर पानी लगा अमृत पानी लगातार किन छत जाने ठीक है लाला जी?
0: अच्छा
1: हाओ और फिर ऊके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
0: फिर से मट्टी बिछाए।
1: हाँ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गंज में भैसन को तो ऊपर बिछा दो बाकी आ रही
0: हाँ आ रही है
1: फिर ऊ के ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की में
0: 10 प्रकार की बीज लेने
1: हाँ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और ऊ में भी बह दू और पानी लगातार किन छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ

0: उगे आए भी वो लाल आदमी एक और कन्ने कुछ अपन ने बीज बोए के ऊपर अपन को वो बिछाने काम
1: पत्ता मत्ता
0: डालने ठीक है। डारवे के बाद मैं अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
2: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
0: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दो
2: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा हूँ
0: तो ठीक है। सो ऊ के बाद तुम अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बच्ची सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही मैं मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है
2: अच्छा
0: हाँ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से भाई में मिला दो
2: तो फिर बन गई मट्टी
0: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो
2: अच्छा
0: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं म्याहूं कछू लगा रहे भाई फेंका जाओ पिंच जाओ भाई डाल दो तो वो एक अपना रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाह में मिल रहा है जैसे साथियों की कहावत है कि आप बाह में रासायनिक बाह में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो इमे भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है इमे
2: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बात है अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
0: हाँ तो इमे 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो इसे अपना स्वास्थ्य सही रहेगा लाला जी और दूसरों अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगा लाला जू हो देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु मैं तो अपनो मोह है जो मियो तो मोह प्राला वो बतात
2: अरे भाजी तो कन्ने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाई जाती
0: हाँ हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
2: अरे भाजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो।
0: हाँ तो लाला जी मैं चली
2: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और
0: बिना जलवायु के बढ़ पाते हैं।
1: बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली
0: हरियाली
1: रहते हैं,
0: हाँ।
1: तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है कि, और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है,
0: खरपतवार
1: तो
0: मतलब
1: इसी
0: आप
1: से तैयार होता है। देखिए, ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करते हो, तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है, वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो
0: खरपतवार निकलता
1: खरपतवार
0: है।
1: जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं, और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी
0: जी
1: जस्ट बताया कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त
0: बिल्कुल जी
1: जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण
0: जी
1: क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की, किसी भी फसल में बार बार पानी देने की
0: यानी
1: आवश्यकता पड़ती
0: आवश्यकता
1: है।
0: पड़ती
1: तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं,
0: जी
1: जैसा
0: जी
1: मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और
0: जी
1: अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद

0: बेच सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि या मिट्टी की गुणवत्ता उर्वरा शक्ति काफी बढ़ जाती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे आपको सिंचाई देर से कम देनी पड़ती है। जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले लगा सकते हैं।
1: और
0: क्या और ये तो और भी अच्छी बात है कि किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है
2: जी।
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो भी काफी अच्छी हो जाती है और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पे अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही है ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही है। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अप करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं, तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9219207749, या फिर श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं। जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम शुभकल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक

0: करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम शुभ कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए

0: एक कामयाब में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूँ आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों, आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की, या फिर व्यक्तित्व विकास की, या फिर सफल कहानियों की, या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों, अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती है, पीछे पीछे चली आती है और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है से आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको

0: कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा बढ़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है व्यक्तित्व विकास में, हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें, सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें, इससे

0: आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
0: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इन्हों तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं। उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे। सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, जिसके लिए हमारा नंबर है
0: 9219207749।
1: साथियों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम उर्षतेगला के पास ओरछा।
1: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने की भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग है कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोई जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रह हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करते हैंगे, हम आपको सीधो ले चलते हैंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आओ चलते हैंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। कहाँ करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही
0: हूँ। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से कर।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे, राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहनें थे, 3 बहनें थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो।
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब कहते हो, ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहती
1: है।
0: अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो अपने बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसमें और छोटे जो

0: होती जब मान लो ग्राम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी बा जब तो खेल कई खाते
0: हाँ, तो वही खेल वे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते तो चपट्टा खेल रहा है,
0: चपट्टा
1: सावन को चपेटा खेल।
0: अच्छा
1: जो खेल रहा है
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेलत में गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा गीत ही नहीं आता? पहले तो गा सुनियो आप।
1: अबे भूल गए तो बड़ा आपको ऐसे कुछ नहीं आता,
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको, लेकिन बड़ा को नहीं लगा था
1: आपको नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: कौनो नहीं गाते हैं
0: आप गाते नहीं। अच्छा आपकी सहेली कौन कौन थी?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काल को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई
0: सब। मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ हम मिल जाते, कभी
0: मिल जाते, इकट्ठी हो जाते,
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जोर से अपन लोग मायके में आप तो सब जाने मिला तो अच्छा लगता,
0: अच्छा लगता है। अच्छा अम्मा जो बताओ की आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन से चलाते थे?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते ये पहन लेते और हम तुमने फिर आके दे रही तो ये पहन नहीं बस और यही कह रहा हूँ।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? कोनो अलग से नहीं है तो।
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में भाई?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन के तेज उम्र में हमारी भाई आती
0: तो मतलब कुछ तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी आपने देखो तो
1: हाँ?
0: पहले से देखो तो
1: हाँ? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा
1: तो से कहते ही हमारे बाप बताई आठ नौ साल के साथ नौ साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे सब नौ साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिन दिन को काम करते हमारी मताई ने कही क्या पाँच सौ रुपया दे दो मोड़ी के ब्याह करने, बोली तो मैं दस रुपया मिला तो पाँच सौ रुपया ले लो पाँच सौ चुका उन लोगों ने सबने सौ सौ रुपया फोन में डाले थे।
0: अच्छा
1: तो वही मताई ने उठे कई में
0: पाँच सौ रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे जैसे ही बिट गया को पुन दिया और पुण्य में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग।
0: अच्छा जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल गए नहीं राधापुर में भाई
1: है
0: राधापुर में ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगे जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बाओ फिर टीका।
0: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह हो
1: तो तीन दिन को होता
0: तो बरात तीन दिन मिली रही थी
1: एक दिन तीन दिन मिली रही थी बरात
0: तिलवाद
1: नहीं तो टीका के देना।
0: अच्छा।
1: और फिर भावर मावर बरतती फिर वो देना छोड़ी जाती बरा दूसरे दिन जाती
0: दूसरे दिन तो जब जयमाला डरी तो अभी
1: जयमाला नहीं डरी हमारी जयमाला नहीं डरी मैं हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार के उसे अपन खोलियन पे हाँ और खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट बल्लाल बापो बल्लाइस।
0: अच्छा जो सब
1: पहला
0: तो मतलब
1: नहीं मिली थी मड़वा की तरह सीधो
0: ऐसे
1: मड़वा चावल मार देते।
0: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कछु पता होगा
1: नहीं जाता हमें नहीं पता।
0: अच्छा चावल को कछु पता ही नहीं है
1: मड़वा के लिए और खड़ा कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मंगा चढ़ो फिर भावरे
0: कहाँ चढ़ा तो आपको
1: हमें पेज ना चढ़ी थी एक किलो के वो खंग वज्जा
0: एक किलो की पेज ना
1: हाँ एक किलो के पेज ना वो खंग वज्जा
0: बस
1: दो और यही के पैर अब तो पैर नहीं थे
0: बाजू बंद
1: हाँ दे चढ़े थे।
0: अच्छा तो अब रखे हो
1: आप भारी बहन की बात
0: है
1: छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले कहाँ से
0: आ रहे सही बात है। अच्छा आपकी विदा का है भाई दी
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं
0: रहा
1: वही में वही थी विदा
0: उतर से इतना

0: समझा
1: सके। नहीं मुटेशन तो फिर बैलगाड़ी में आए थे।
0: बैलगाड़ी में अच्छा, इसी पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी?
1: हम ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन बेदा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी।
0: अच्छा बैलगाड़ी झांसी से। कैसा लगा तो आपको बेदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी में?
1: बैलगाड़ी से होती पहले बेदा सवाई की होती हम अच्छी का।
0: अच्छा
1: पहले देखते वाहन कहाँ थे? ओरछा तक नंगा जाते, खेलार तक नंगा जाते। अब तो एक कदम नहीं निंगरा आदमी।
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है,
1: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी
0: से
1: जाना है।
0: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए थे ससुराल में, खूब मिलो आपको
1: ससुराल में? सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा आपके अम्मी नंबर की है?
1: दूसरे नंबर की। नानी नौ दो
0: नंदन की शादी हुई?
1: हाँ।
0: अच्छा शादी के बाद?
1: बड़ी हती।
0: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एटे का करस में वही मतलब
1: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
0: अच्छा खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
1: खिचड़ी बनाई थी।
0: आपने खुद बनाई थी?
1: नहीं बना पाई थी हमने, जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा।
1: और चमचा से तरवा दी थी।
0: नाम होगा
1: द्वारे में ओरेंडर वा दे।
0: अच्छा ओरेंडर वा दे। तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर का करने मिलो? तो
1: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल
0: देने वा देने।
1: हाँ।
0: इस उल्टा नहीं मोरा
1: पहले देता ही है तेल।
0: अच्छा।
1: अभी भी देता मोरन के।
0: हाँ।
1: जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा सब बहु से सास लेते हुए पैसा।
0: अच्छा।
1: चाहे दस दर है चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ
0: दे
1: लेकिन बस सास ले। ओरेंडा तो ओरेन पे रखत बहु।
0: अच्छा।
1: तो बेबी सास ले।
0: अच्छा
1: जी की सास ना हो तो जेठानी में
0: तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुलत?
1: नहीं हमारे समय में नहीं खुलत।
0: जूड़ा नहीं खुलते?
1: नहीं।
0: अच्छा आपकी
1: जो छोड़ा खोलते जो
0: छोड़ा खोलते
1: जो छोड़ा
0: तो ये भी पैसा
1: सास खोल सकती है
0: खोल
1: सकती
0: है तो कम हाथ हो तो मतलब
1: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
0: नहीं तो
1: कछु महा थी।
0: अच्छा आपको नहीं पता
1: छोटे आते समझ
0: नहीं आते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिल के लड़ाई?
1: जेठानी के संग कराते लड़ाई का होती?
0: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
1: नहीं हमारी नहीं भाई
0: जेठानी
1: सास से भाई कब
0: नहीं होती। आप सीधी हती के दो जने
1: भी एक से आते मिलके कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा सब अलग अलग होगा।
0: अच्छा और सासरी में का काम होती आपके?
1: खेती खेती होती रात से खेती होती।
0: अच्छा
1: पहले मोटर कहाँ थी रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते।
0: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
1: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
0: कितने बजे उठती हैं आप?
1: चार बजे उठ जाते
0: हैं।
1: चार बजे से पी सकते सो पाँच छह किलो नाच पीस देते।
0: पाँच छह किलो रोज पीसने?
1: हाँ रोज। इतना जेठानी पी सकती
0: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो?
1: चार बजे से भी पी सकती।
0: संगे पी सकती हूँ?
1: ना कबू संगे कबू अलग अलग पी सकती।
0: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम कर?
1: गोबर गोबर डालते।
0: कितनी गाय भैंसे होती आपके?
1: बोला दस बारह गैया होती गोबर मोबर डालते झाड़ा झूठी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती
1: तो फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते सो गांठ चलाते दिन भर।
0: अच्छा वहाँ से बहाने आते?
1: नहीं बैलन से घर में नहीं आती लोग सो वही चलाते रहते कब हम स्वाद बैठा नहीं चलाती कब हम चलाते रहते
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
1: हमारा छह लड़का।
0: छह लड़का और लड़की?
1: लड़की नहीं है एक।
0: लड़की नहीं है एक तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
1: पढ़ा पढ़ा परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
0: अच्छा
1: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
0: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हुई?
1: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
0: अच्छा नाती इनकी भी हुई? कितनी नाती है ये?
1: छह नाती है छह नातने हैं।
0: अच्छा तो
1: बिलाती को
0: मतलब बिलात बड़ो
1: परिवार है? हाँ तो छह लड़का है तो दो दो हैं सबके।
0: अच्छा, अच्छा
1: और एक के चार हैं बड़े के तीन मोड़ी हैं
0: तो एक मोड़ी
1: तो आप बेरोजगार हो गए तीन ना ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
0: तो बहुत बड़ा परिवार है। आपको अच्छा लगा सब जगह आ जाते हैं तो।

0: आप सुनाटा नहीं खेलती
1: हूँ
0: कैसा
1: खेल लगती है सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेल
0: याद करने आते बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हुई है।
0: जैसे आपने पढ़ाई पास तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
0: कैसा लग गई थी मतलब?
1: पहले चार जन के कागज दे थे घर के तो सब ने 200 रुपया में लगते सो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें नहीं करना। सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत है 350 में लगते हमें 200 रुपया।
0: धीरे धीरे करके
1: फिर हम इनके ससुर बोले लाला हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खा भी के गाँव में गज्जा का करम फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच हम पानी भरे आते इनको तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी छोड़ दो हमने बना तो नहीं अब जब से हमने गाड़ी करी जब से पानी भर इनको मतलब खाए पी बे की परेशानी से जैसे नहीं है तो जिदे तो सकते खा नहीं करते तो को दे रहा
0: सही बात है
1: तो को ना करो।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाके मिल जाता आपको?
1: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
0: होगा
1: 350 है हमारे फिर 1500
0: है तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी और जा आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर
0: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
1: चौपे में तो महत्व जो देखो आप सोच रहे आदमी के जब पढ़ा लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए?
1: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
1: है लेकिन पहले कहा मिला?
0: हाँ पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम पढ़ाए चाहिए है ना बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
1: और का
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी सब 8-8 पढ़ी ना तो नाती पढ़े
0: पढ़ाना चाहिए
1: सब पढ़ा रहे को पढ़ रहा हो को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब 7-7-8-8 में करके छोड़ दो ब्याह कर दो ना तो दन की
0: बहुत बढ़िया
1: आप को पढ़ दो अब दो नाती पढ़ रहे की
0: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ ये बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

होए माता राजम्मा, उस लोके तखले आन

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई जब बहुत अच्छी बात हैगी, कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका बासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़तो। तो देखो अब अपनो समय होते है वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गांव में या आपके आसपास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, क्या की आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सका थेंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

उसमें नैनो खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे। चूंकि एक्सपर्ट आज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो कल हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर। लेकिन आज इस विषय जो समसामयिक चर्चा भी है कि क्या इस मौसम में क्या देखभाल, क्या किसानों को सावधानी, किस तरीके तैयारी, क्या करना चाहिए, इस विषय पर बातचीत आप करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम को। लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन

0: सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, मतलब जरूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अब किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार, नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है, लंबाई 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है।
0: जी, जी, जी।
1: तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी जी जी, और रोपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रोपाई, चूंकि एक विधि रहती है रोपाई की, तो कौन सी ऐसी विधि है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भटे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भटे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा लगती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूम में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूम में आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर, बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा, अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारी में भी संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलेनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है। तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इसके लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
0: बिल्कुल, और जिन किसान साथियों की सब्जी, चूँकि कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियाँ, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियाँ, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों?
1: बिल्कुल सर, अभी क्या है जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियाँ की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम अपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू ये फैलता है, तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सॉल्यूशन और साथ में ही हम मैनकोजैब या M45 का 1% सॉल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
0: बहुत बढ़िया जानकारी, और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूँकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, चूँकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
0: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाई भी है, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
1: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं, जैसे हम बात करें अर्का नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
0: जी जी जी, और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
1: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। अच्छा, तो अच्छा। चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी, और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से अपना बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो

उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। जी हाँ दोस्तों, आसपास कार्यक्रम में अपन आप आसपास को कवरेज करते हैं, जो अपने आसपास में चल रहे गतिविधियां हो रही उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो अपने पुख नक्षत्र है, तो पुख नक्षत्र में कई गांव के लोग आउट हैं, कई जगह से लोग बाग आउट हैं, सो उनसे उनकी राय जानी है पन्ने के, वे काय खिलाने आए हैं और कब से आ रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे भैया

0: को काय महत्व है ऐसो के कौन से है?
1: जब पोखन में भी आए है तो महत्व हो जी, जब पोखन पोखन भी आए है थे
0: भगवान जी। अच्छा पोखन पोखन आए थे भगवान जाकर, तो यही से आप और भी पोखन में आप
1: पोखन में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और एक क्रम में जैसे के अपने थे आउट, तो खाना पीना का घर से सब ले आउट व्यवस्था कहाँ से बना लिया?
1: मन से अपनो खाना पीना बना लिया।
0: अच्छा
1: भगवान के दुआ बैठा हो तो अपने ले ली गाड़ी का भगने, आप लोग खाना पीना ले आप लोग खाओ बस।
0: चलो अच्छी बात है। तो भगवान जी कुल मिला के अपनी जो श्रद्धा है वह पूरी करते थे आज से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने, देखो कितनी अच्छी बात बताई किलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादाजी।
2: देखो दोस्तों जयते भैया ब्रज किशोर जी जो कुगा गांव के रेवे बाय थे, दोस्तों इनसे अपन ने कितनी अच्छी बातें जानी हैं और भैया जी ने बहुत ही अच्छी तरीका से अपनी बातें को बताई हैं कि हम कब से आ रहे हैं और का का हमारी मनोकामनाएं पूरी भई हैं। सो भैया जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद इनने तो कीमती समय ने कार्य किया अपन को दो। अब दोस्तों एक क्रम में आप और कह रहे हुए कि माता दीन भैया बहुत टाइम से बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों आओ मनोरंजन के लाने सुनते हैं अपने एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम आसपास।

आनंद लव है, ये गीत को गा रहे थे भैया मिथिलेश कुमार जी। अब दोस्तों मिथिलेश कुमार शर्मा जी के गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता दे बे के आज को अपनो ये कार्यक्रम आसपास संजावे को समय होगा है, सो हमें दो ये कार्यक्रम संजावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सावन करो जात ससारे चैन जिया में नैया ओ नैनन धार लगी असुंगन की रोके रुकत।

देखत ही देखत ही हर सा गई जो बगिया

जगत घोड़ा पदन संहारे कनिया सबरी पंख पसारे कनिया सबरी पंख पसारे ले तन रस मुस क्या गई जब बगिया ले तन

0: हेलो
1: हेलो हेलो।
0: जी भैया, कहाँ से?
1: योगेश
0: कहाँ से? अच्छा योगेश जी,
1: जांगड़े
0: योगेश जी कैसे हैं? और बताइए,
1: बोल रहे हैं छत्तीसगढ़
0: सब बढ़िया है?
1: बढ़िया
0: चलो अच्छी बात है। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे अपन?
1: है अच्छे हैं। हाँ जी, फिल्म है यादों की बारात और गीत के बोल है चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: अच्छा
1: जी
0: बिल्कुल, चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: जी
0: चलो बढ़िया है। और सब बढ़िया है?
1: हाँ
0: चलो ठीक है, तो गीत की ओर चलें का?
1: जी हाँ जी
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी भैया, कहाँ
1: आयु
0: से?
1: माता दिन भैया, श्रवण नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर हम बुंदेलखंड ओरछा पे आज नहीं माता दिन भैया जी से। भैया जी, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है शारदा भैया, बिल्कुल बढ़िया है।
1: जी, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम की चपेट में हूँ
0: अच्छा,
1: और रात में ठंड लग गई थी जिसकी वजह से मुझे सर्दी हो गई है। दवा फवा ले लिया है, थोड़ा आराम मिल गया है, अब कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं है।
0: चलो ठीक। क्या है कि बरसात के मौसम में ये कई तरह प्रकार की बीमारियां वायरस फैलते हैं जिससे अपन लोग बीमार पड़ जाते हैं।
1: क्या है कि मौसम में कभी उतार चढ़ाव होता रहता है,
0: हाँ
1: कभी
0: हाँ
1: ठंडा हो
0: सही कह
1: जाता है,
0: रहे हैं।
1: कभी गर्म हो जाता है, तो इसके वजह से एडजस्टमेंट कहीं कहीं हम नहीं
0: हाँ
1: कर
0: हाँ
1: पाते हैं
0: हाँ
1: मौसम के साथ में,
0: हाँ
1: जिसके कारण तबीयत खराब हो जाती है।
0: हाँ तो बताएं, अब गीत कौन सा सुने अपन?
1: कल 8 सितंबर को हमने महान गायिका आशा भोसले जी की जन्म जयंती मनाई
0: जी
1: और वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की धनी और बहुत अच्छे अच्छे गीतों में गाया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थी और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त था, सम्मानित की गई थी भारत सरकार के द्वारा।
0: जी
1: और ऐसी महान गायिका सदैव हमारे दिल दिमाग मन मस्तिष्क में जीवित रहती हैं और जीवित
0: बिल्कुल
1: रहेंगी। इन्होंने अच्छे अच्छे भजन गीत और लोक संगीत, साथ में सुगम संगीत
0: जी
1: इत्यादि इत्यादि प्रकार के अनेकों प्रकार के गीत उन्होंने गाए हैं। कव्वालियां
0: हाँ
1: गाई हैं, गजल गाई हैं, गीत गाए हैं, नगमे गाए हैं,
0: सही कह रहे
1: तो एल्बम भी किए हैं, फिल्म
0: हैं।
1: संगीत भी गाए हैं। तो ऐसी महान गायिका को याद करते हुए सत सत नमन वंदन प्रणाम करता हूँ
0: जी
1: और आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सौदागर,
0: जी
1: आशा भोसले जी ने गीत को गाया है,
0: जी
1: सजना है सजना के लिए, रविंद्र जैन साहब का संगीत।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: सजना है सजना के लिए,
0: सजना है सजना के लिए।
1: जी बहुत ही अच्छा प्यारा सा
0: हाँ
1: गीत है, आपसे
0: हाँ
1: अनुरोध करना चाहता हूँ। आकाशवाणी बुंदेलखंड ओरछा से प्रसारण है तू।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी फरमाइश करी इकला ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: वे आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

0: है फूलों की,
1: हेलो।
0: फूलों।
1: तो
0: हेलो
1: जी कहाँ से?
0: जी, गाना फिल्म बता देता हूँ वो, फूल और कांटे का।
1: अच्छा, फूल और कांटे का कौन सा गीत है?
0: उसमें से कोई सा भी चला देना।
1: अच्छा
0: जी,
1: और का हो रहा अपन?
0: कुछ नहीं है, बैठे हैं घर पर ही बैठे हैं।
1: अच्छा, घर पर ही बैठे हैं।
0: घर पर ही बैठे हैं, बस फोन लगा रहे थे।
1: घर पर बैठे फोन लगा रहे थे यार।
0: जी
1: चलो, अच्छी बात है आपका फोन लग गया
0: जी फोन लग गया और आपसे
1: है।
0: बातचीत भी हो गई।
1: हाँ देखो, बात हो जाए तो अच्छा लगा था
0: जी,
1: है।
0: हाँ हाँ
1: सही कह रहे हैं। चलो ठीक है, तो अपन अब गीत सुने आगे।
0: जी, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी भैया, कहाँ से?
1: ये पुहा से बोल रहे सर, महेश रायकवाल। हाँ
0: पुहा से महेश रैकवार जी।
1: हाँ
0: जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन लगा के लाने हेलो फरमाइश में।
1: हमारा फोन लगा ले, बिलाद देने को बात बात हो रही आपसे। बस
0: हाँ जी, बताइए आज कौन सा गीत सुने
1: बढ़िया
0: हैं?
1: है,
0: हाँ
1: बढ़िया है। सब
0: गीत
1: बादल
0: कौन सा
1: का बंद हो
0: सुनेंगे?
1: गई अब, बस आनंद है सब।
0: सब आनंद है?
1: हाँ
0: चलो बढ़िया है। अच्छा गीत कौन सा सुनेंगे आज अपन?
1: सर, आज एक गीत सुना है, वो अभी एक वीडियो चल रहा है सुनील लोधी का, आपने देखा होगा किसी लोगों ने, तो उस फिल्म गीत है वो, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल रही।
0: अच्छा
1: हाँ बड़ा अच्छा गीत है। अभी टाकिस पर भी फिल्म, भी नई फिल्म आई एक सुनील लोधी अपने दृष्टि वाले थे जो।
0: अच्छा
1: हाँ जी, सागर जिले की जयसिंहनगर ब्लॉक के रहने वाले हैं। अभी अभी वर्तमान में टाकिस पर उनकी फिल्म चल रही है, दृष्टिवादक मतलब दृष्टिवादक की फिल्म है ये।
0: चलो ठीक है, जो गीत सुनिए अपन।
1: हाँ जी, देखो दिखाई नहीं देता।
0: अच्छा तो सुनिए, अपन इस गीत को सुनते हैं।
1: ठीक है सर,
0: नमस्कार भैया।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार सर
0: जी। भैया कहाँ से?
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नहर मंतोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: जी भैया कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, आप लोग का दुआ है। ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया है, आप सब जन की दुआ है।
1: आज सर बाबुल फिल्म का गाना सुना दीजिए, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का।
0: अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, अपन इस गीत को जरूर सुनेंगे। ठीक,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: कोटा से बोल रहा
1: हूँ जी। राजेश जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, खाना खा लो।
1: हाँ बिल्कुल खाओ, खूब दे भगवान।
0: भैया
1: आज कौन सा गीत सुने राजेश जी? अपन
0: बढ़िया है भैया, आप धूप खिली पे तो पानी खुलवाओ।
1: हाँ पानी खुलवाओ।
0: आओ मूंगफली सही है, पारा लग रहा।
1: अब तो दानों पर जाए मूंगफली में।
0: आओ भैया तो है।
1: अच्छा गीत कौन सा सुने अपन आज?
0: आज सुनो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है, छतरी फिल्म में गाना है, सपने में सखी देखो नंद लाल।
1: अच्छा
0: हाँ
2: सपने में सखी,
1: सपने
0: में सखी देखो नंद गोपाल।
1: सपने में सखी देखो नंद गोपाल।
0: जी जी जी
1: चलो ठीक है,
0: मिलो
1: देख रहे
0: हाँ। फिल्म में है ना वो।

0: मैं हूँ ज्ञान
1: और मैं हूँ विज्ञान।
0: डाबर रेड पेस्ट, इसमें है 13 इफेक्टिव जड़ी बूटी।
2: इसके आयुर्वेदिक तत्व
0: 10 डेंटल प्रॉब्लम से सुरक्षा दिलाए।
1: तो ये वाला टेस्ट।
3: हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से?
4: मैं पुरुषोत्तम कुमार, गांव दंडी, तहसील भगवा, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ
3: जी।
4: हाँ जी, हमारे दोस्त मोहित हारून जी, उन्होंने बोला कि फोन लगाओ, जल्दी से जल्दी फोन लग जाएगा।
3: अच्छा,
4: उनसे हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, हमारी गप चलती रहती है फोन पर।
3: हाँ।
4: तो वो हमें जानकारी देते रहते हैं हर प्रोग्राम के बारे में।
3: हाँ।
4: तो हमें गाना सुनाना चाहते हैं अपने दोस्तों को, काली टोपी लाल रुमाल का।
3: हाँ, गीत कौन सा है?
4: लागी टूटे ना अब तो सनम।
3: लागी टूटे ना,
4: आ,
3: लागी टूटे ना अब तो सनम।
4: लागी छूटे ना अब तो सनम।
3: चलो ठीक है।
4: और दोस्त हैं हमारे शिवाल जी, मोहन आसिफ खान जी, भगवान सिंह परमार जी, शेख जाफर हसन, अनूप कुमार भट्टाचार्य, गजराज सिंह लो जी हैं, मोनू चंद जी हैं, राकेश कुमार जी हैं। गाना डेडिकेट करने चाहते हैं।
3: बिल्कुल।

0: हेलो,
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से
1: जी? मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी। हरबिलास जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी तरह से आपकी दुआ फिर कृपा से। फिल्म
0: चलो बहुत बढ़िया है। और बताओ कौन सा गीत सुने हो आज?
1: का नाम है दूसरा आदमी,
0: जी
1: नजरों से कह दो कि प्यार में मिलने का मौसम आ गया।
0: अच्छा
1: जी
0: बिल्कुल। नजरों से कह दो कि प्यार में मिलने का मौसम आ गया।
1: गया।
0: यार क्या बात, चलो बढ़िया है। और सब मजे में?
1: मजे में शरीक हुआ
0: चलो ठीक है, तो गीत की ओर चलें अब।
1: जी।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही बिना अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को अब नहीं संपन्न होने को समय हो गया है, सो अपने रेडियो साथी माता दिन भैया को दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति। और चलत चलत अपन सुनो बढ़िया बढ़िया से हिंदी गीतन, खुलो गीतन को आनंद। नमस्कार।

भई है, हम सब को आनंदी भई है, हम सब को आनंदी भई है। ऐसे अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे खुशी रहे जा राज दुलारी, अरे कुल को है।

बहुत खा जी के लड़का बिटिया तुम्हें राम ने दई है हम सबको आनंद भइए ऐसे तो कह रहे के गगरी उतार दिखाए तुम जो

0: उसे हम दिखवा सके रे
1: जीता।

0: हवाओं के वो है, तुम कह रही के दो बेने हैं, हमें नेक में जो नहीं जाने मालूम का जाने क्या वो है।
1: प्राणन सुन प्यारी भो जाई, ध्यान से सुनियो बात हमारी, ध्यान से सुनियो बात हमारी, काद हो गगरी।

0: बिटिया हम सब खुश रहे और दोनों को लड़की शान बढ़ावे जो ही है एकदम से नेगे बेचाने और कछुरे जाने और
1: अरे खुशी रहे जा राज दुलारो कुल को है वो ज...

0: एंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं। तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए, उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा। और

0: हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम
1: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई हो और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
0: तो हम चल चलते वहाँ पर हम पहुँचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहाँ पर शोध होता है, जहाँ पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब ये सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने में मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है, जो किचन से पानी निकलता है
0: जी।
1: और जो है शुद्ध सब्जियां हम जो उसे उगा सकते हैं
0: जी।
1: और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में
0: जी।
1: हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है
0: जी।
1: तो उसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें वो खाद को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा
0: जी।
1: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
0: जी,
1: और लहसुन है
0: जी।
1: इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
0: जी,
1: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो हम इसको बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पे टुकड़ों में जब खेत को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
0: जी जी।
1: तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम

0: हमारा देश, हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के, और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए, कुछ कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सके, कि हम जो भी जानकारी दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं, हम उपलब्ध रहेंगे।
1: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से, खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ, मतलब ये मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और जो मिर्च है, पालक है, और आपका धनिया है, हरा धनिया
1: जी,
0: और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो मतलब जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, और समय कम लगने की वजह से हमें, भाई देखो हमारा किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई जो है उसने धान लगाया, 6 महीने बाद आया, धान अलग यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिसेस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई, और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां, और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है, तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं, और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केट में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे हम यहाँ से दिल्ली, हम मैं देखता हूँ कि चना भी बहुत जाता है
1: जी, जी,
0: दिल्ली
1: जी,
0: हरा चना
1: जी,
0: तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए, क्योंकि चने साग बनता है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो आप ये यहाँ से चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
1: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं
0: जी, जी।
1: तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है?
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं, उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में, मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी, अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो है खाद डालते हैं देसी खाद
1: जी।
0: और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया, हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम

0: बैंगन का पौधा काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी जी,
0: लेकिन जो साखी है जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी जी,
0: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर, हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में। आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितने हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे, किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को, खेती को जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो है जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आए, इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये हमारे कृषि का ये भविष्य है और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए ही, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम मतलब यह सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।

0: बार फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यवसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खादों की सब्जियां जो हम खाते हैं तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करें।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह की केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती हैं, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे

0: साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
1: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
1: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
0: 92-19-20-77-49।
1: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत। हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में, इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे।
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए

0: 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी है। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओ, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा

0: सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन के जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
1: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहां पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
0: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइव OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC MI वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं और साथियों

0: अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है
2: 92 19 20 77 49।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

साथी भैया हरो नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथी हरो, अम्मा के चौके कार्यक्रम में आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपनी सेहत से जुड़ी हुई बातचीत कर थेंगे और ऐसी रेसिपी इनको जाना थेंगे जो अपने लाने आसान हो गए, जिनको अपन आसानी से खा पावे, है कि नहीं। तो देखो भैया, और आप सबको बता दे कि मौसम में बदलाव को असर हमारे खान पान पे सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आउत है को। और अगर ई मौसम की बात कर ले तो ई मौसम में फल हमें पोषण तत्व दे देंगे, जैसे कि हर मौसम को एक फल होता ही, सो ऐसे ही ई मौसम के भी कछु फल हैंगे जो खावे से अपन को पोषण तत्व भरपूर मात्रा में मिल सकत है, जो अपने शरीर के लाने बहुत ही ज्यादा आवश्यक होतेंगे। ई मौसम में तापमान और गर्मी की असर को कम करबे के लाने फलन के राजा आम के संगे संगे तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार, बेल और ऐसे कई तरह के फल हैंगे जिनको खाबे से पर्याप्त मात्रा में जो है अपन को प्रोटीन और पोषण मिलत है गो। और भैया हरो देखो, आप सबको बता देवे कि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही, राम दही घाम देखी से तो बुखार से चढ़त जहा लगत के बाहरी को कोनो काम ना मिलवे, बस कूलर पंखा में बैठ के अंदर ही अंदर को काम कर लेवे। लेकिन कहा है कि काम काज कर भी किलाने बाहरे तो निकल नहीं आते हैं, सो अपनी अपनी देखभाल अपन और अनखो कर बहुत जरूरी है गो। और जब भी घर से बाहरे निकलवे तो देखो, हम बीर बीर आप सब जनन से कहूंगे कि मुड़ी खो ढांक के रखबे, चाहे स्टॉल से ढांक ले बे, चाहे भैया हरो दुपट्टा से। अब दुपट्टा को मतलब जो नहीं है कि पत्रो से दुपट्टा ले लो, अच्छो मोटो सो हो गए दुबला उतर करके डाल लो खो, ऐसे दुपट्टा डालने अपन को, ठीक है। और अगर देखो आंखन पे चश्मा लगा लो तो भी आप घाम से भी बच सकत हैंगे। तो भैया हरो आप सबसे क्या वो चाहते हैं कि घामो बहुत तेज पड़ रहा है गो, ध्यान रखो अपनो तनक और बाली बच्चन को रखो। बाली बच्चन को कहा है कि अब देखो भी तो नहीं जाना थेंगे कि हमारे लाने का सही है का गलत है गो, सुबह जिद करने लगा थेंगे बाहरें खेलवी की। अब ऐसे घाम में बिल्कुल आप उनको अनुमति ना दो कि भी बाहरें जाके खेलवे, आप तो बस उन्हें सुबेरे शाम जो ठंडो ठंडो मौसम होते ही उन्हें खेलवे के लाने को, और घाम में तो बिल्कुल ही ना करन दो आप बाहर, अंदर ही बैठा रहो, अंदर ही बैठ के उनके संगे पढ़ाई करवाओ, उन्हें खावे पीवे में बिदाए रहो, जैसे जो पोषण वाली चीजें होती हैं अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें खवाओ। जी नहीं खवाने आपको के नमकीन खुआ दो और समोसा खुआ दे, जलेबी भजिया ऐसी चीजें नहीं खुआने हैं, जो उनके लाने जरूरी है वे चीजें खवाओ जिनसे उनको पोषण मिलवे, जिनसे उनको शरीर ताकतवर बनबे है और ही लपट से बचा रहे। अभी देखो अमिया को पनो खूब ही चल लो ट्रेंड में है वो, करनी लगत के नई रिलाई ट्रेंड में चल रही, सो ऐसे ट्रेंड में अबे अमिया को पनो चल लो बढ़िया, सो अमिया को पनो भूंज के बढ़िया अमिया को पनो बना के खुआओ है, प्याज डाल दू मैं खूब ही बिला ताकि उनको लपट ना लगबे। इन सब चीजन को अपन को ध्यान रखने हैं, काहे कि अपने कोई जिम्मेदारी होती कि अपन इनको ध्यान रखबे, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके में साथी भैया रो हम आपको बताएंगे कि सेहत को साथी है गो ई मौसम की फल। और फलन की अगर बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको अपन और खा सकते हैंगे, जिनको खाए से अपनो स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, अपन को पोषण भी भरपूर मात्रा में मिले और ई मौसम से बचा के भी अपन को रखे। ई मौसम में तापमान और गर्मी के असर को कम करबे के लाने फलन के राजा आम की तो बात अपनी कर ही रहेंगे, संगे संगे में अपन करें तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार और बेल की भी बात करें, ठीक है। अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमें फलन को अपने आहार को एक हिस्सा बना लें जी, ठीक है। इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता

0: क्षमता जो हैगी अपनी बा भी मजबूत होत हैगी और संगई में स्वास्थ्य की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होत हैंगी उनसे भी जो बचाव थे अपन औरन को। ठीक है भैया रो, सो का करने अपन को कि गर्मी के फल जो हैंगे भी बीटा कैरोटीन कैरोटेनॉयड और खनिज तत्वन से भरपूर होते हैं। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल फ्री रेडिकल्स को कम करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव देंगे। केवी को मतलब है गो कि गर्मियन में इन फलन को सेवन करने से अपन और स्वस्थ रहेंगे और आजकल हो भी वाली जो बीमारी है उनसे भी अपन बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फल कौन कौन से हैं और उनके पोषण तत्व का कहेंगे भी हम आपको आगे कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इतने साथ ही अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को। साथ ही में आज के कार्यक्रम में अपन जो भी जाने के योग कर वो भी अपने लाने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते वो। ठीक है, तो बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। अब अपन और सुनाएंगे एक बढ़िया से लोकगीत को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको बता देंगे कि हम हैंगे आपके संग, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौके में अपन और जान रहे हैंगे कि सेहत के साथ ही हैंगे ई मौसम के फल। तो प्राकृतिक मौसम में बदलाव के संगे संगे जो आत है भी अलग अलग किस्म के फल भी आते हैंगे और जिनको स्वाद भी ई मौका के लाने बहुत अच्छे होते हैं। स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होते हैंगे जे फल, आपको हमेशा सेहतमंद और मौसमी बीमारियों से भी जे बचाऊ थेंगे, इनकी बड़ी भूमिका इनमें रहेगी। तो साथियों अब जैसे देख रहे हैंगे कि तरबूज खूब ही खूब बिक रहा होगा बाजारन में और अपने सब साथी चाव से खाऊत भी हैंगे इको, तो इनके पोषण तत्वन के बारे में अपन कछु बातचीत कर ले में अपने साथियों से। इनमें पोषण तत्व के संगे 92% पानी होते है, वो तरबूज में मौजूदा विटामिन ए सी और बी भी होते है वो। और इसके अलावा आप सबको बता देवे कि एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन जो कि हृदय और हड्डियों को सेहतमंद बनाते है वो। संगई में साथियों मधुमेह रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जो मधुमेह के शिकार हमारे साथी हैंगे वे इको खावे तो लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। तरबूज को सेवन कर सकते हैंगे वे, और मतलब कभी कभी ऐसा होते ही ना उन्हें लगत क्यारी जो मीठो है को

और हम नुकसान ना कर जावे, हमें हम खें के नहीं खें। तो वे खा तो सकते ही लेकिन सीमित मात्रा में खावे। और अगर देखो आपकी मधुमेह ज्यादा ही खराब है तो फिर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खाइयो। लेकिन जिन साथियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है, वे भरपूर मात्रा में ही खा सकते हैं लेकिन लिमिट में। उनके लाने भी सीमित चीजें होती हैं भैया, हर अति कोनो भी चीज की अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब अगलो नंबर आते गो आम को।

सालों से इंतजार आप सबको करने आए, काहे कि अबे बाजार में जो है आम आ तो रहो, लेकिन जब दशहरी आन लगती ना, वो बड़ो अच्छो आम लगा थे वो दशहरी को, और सब जने एकदम ललचिया उठेंगे कि अरे भैया दशहरी आ गई, अब तो खा लो, रुक नहीं पा रहे अपने आप को। तो बड़ी अच्छी बात है, खाएं जज्जी, लेकिन हर चीज को एक सीमित मात्रा में खाएं चाहिए, तो अपने शरीर को भी फायदा दे और अपन को भी फायदा दे। कोनो भी चीज की अति जो है वह अच्छी नहीं होतेगी। अब अगर साथियों उतना ही हम बात कर ले खरबूजा की, तो खरबूजा जो है वो गर्मियन की तपिश कम करवे के लाने, यानी जो गर्मी अब बहुत भयंकर चल रही है, अरे भैया गर्मी की बात करें तो हमें आकपकी सी झूठन लगा, तो गर्मी की तपिश कम करवे में खरबूजा जो है बेजोड़ है। वो इमें कहा होते कि एंटी ऑक्सीडेंट से जो भरपूर होते है वो, और ई फल में फाइबर्स के संगे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाओ जाऊ थे गो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो मधुमेह रोगियन के लाने भी लाभकारी होते गो, लेकिन मधुमेह रोगी जो है इको सेवन सीमित मात्रा में ही करवे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप सबको, लेकिन खावे में भी बड़ो स्वादिष्ट होते हैं। क्यों साथी, तो अपने पतो का कर रहेंगे कि इके अंदर यानी खरबूजा के अंदर जो बीजा रहेंगे, उन बीजा को जो है सुखा लेतेंगे, धूप में पहले डाल देतेंगे, धूप तो वैसे ही इतनी तेज पड़ रही हैगी कि अच्छे अच्छे आदमी भी सूख रहेंगे, तो ये तो बीजा ही हैंगे। इनको सुखावे के बाद भी क्या कर रहेंगे कि इनकी कछु तो बीज ऐसी चीज बनाऊ थेंगे जो उन्हें अच्छी लगा थी, या फिर इन बीजन के अंदर जो एक चीज निकलत है खावे वाली वह बड़ी स्वादिष्ट लगा थेगी। तो ऐसा भी काफी सारे साथी कर रहेंगे, और संगे में जो फल लगावो चाहते हैं, पेड़ लगावो चाहतेंगे, तो बेबी इन्हें बचा के रखा तो और क्यारियन में ऐसे ही डाल देते ही। अब भी होत नहीं है तो बात अलग हैगी, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहेंगे। अब हम बात करें बेरीज की, तो बेरीज के बारे में आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार की बेरीज होती हैंगी, जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि। इन सब में जो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होतेगी। इनमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाऊ थे वो, इसे इनको नियमित रूप से जो है अपन को सेवन करें चाहिए। संगई में देखो साथी हरो, बाजार में जो है आलू बुखार भी देखवे में आउत है गो, और आलू बुखार की अगर बात करें तो कछु दिनन बाद बाजार में जो आसानी से मिलवे वालो है गो। आलू बुखार जो है वो फाइबर, विटामिन सी और ए को एक अच्छो स्रोत है गो। जो फल जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित रखत है गो। इको सेवन सेहत के लाने बहुत ही अच्छो मानो जाऊ थे गो साथी हरो। तो जो भी हमारे श्रोता कछु श्रोता साथी, इनको तो जो बहुत फेवरेट भी रहते है गो, रथ के नहीं रहते, सुबह इको खा सकत हैंगे, और कछु तरन बाद जो है आलू बुखार आपको बाजार में खूब भरपूर मात्रा में मिले गो। अब ऐसे ही मैं आपको बता देगी कि बेल जो होतेगी ई फल में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर इतिक सब पाए जाऊंगे। नियमित अंतराल में बेल को सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते है गो, और शरीर को अंदर से ठंडक भी प्रदान करते है। साथियों क्यों अपने साथी हैं जो बुजुर्ग लोग होते अभी भी हैंगे वे का करत के बेल को शरबत बना के पियते। अब बेल को शरबत कैसे बनाते जो हमें नहीं पतो, लेकिन हाँ बेल को शरबत जरूर बनाते वे, और उसमें शक्कर डाल के पिया थे जो भी कथा थे कि बहुत फायदेमंद होते वो, और खास तौर से ऐसे घाम से बचाऊ थे, ऐसे गर्मी के मौसम में बचाऊ थे, ठीक है। अब अगर बात कर ले मैं जामुन की, अब साथियों ई फल को स्वाद और लाभ लेवे के लाना कछु समय तक आप सबको इंतजार करने हुज्जे करने पर है भैया रो का जो आओ नहीं है। इमें पाओ जावे वालो जो जाम्बुलिन नामक को तत्व होते गो, वो ब्लड में ग्लूकोज को कम करवे में बहुत ही मदद करा थे। इसे हर कोनों को इको सेवन करें जज्जी। मधुमेह रोगियन के लाने तो जो औषधीय की तरह काम कर रहे थे वो, तो बेबी इको खा सका थेंगे। अब साथियों कछु और बात हम आपको बता देवे कि मधुमेह रोगी जो है वे समझदारी के संगे हर फल को ले सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे अगर स्वाद की बात करें तो आम धारणा हैगी कि मधुमेह रोगियन को फल नहीं खाने दे जज्जी, लेकिन मधुमेह रोगी जो है वे सब फल को सेवन कर सकते हैंगे, जो सही बात हैगी। हर एक फल में अलग प्राकृतिक मिठास होतेगी, ऐसे शुगर लेवल जो है गो वो गड़बड़ा सकते है गो। इको आसान तरीका जो है गो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में रखबे, ई पैमाने से और जो स्पष्ट हो जाऊ थे गो के कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोनो भी खाद्य पदार्थ खावे के बाद कौन सी गति से जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकते हैंगे, जो मानक शून्य से

लेके 100 तक है वो। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से 70, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाऊ थेंगे और शुगर लेवल के आकस्मिक उतार चढ़ाव को कारण भी बना थेंगे। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 69 से 56 होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मध्यम गति से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाऊ थेंगे। तो साथी यारो केबी को मतलब जो है गो के अगर अपने शुगर वाले साथी भैया हैंगे और वे फलन को सेवन करवो चाह रहे हैंगे, तो देखो वैसे तो सब फल जो हैंगे वे सही हैंगे, लेकिन हम आपसे जो कहवो चाहते हैंगे कि एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेवे कि हम ऐसे फल खा सकत या नहीं खा सकत। देखो अपन तो डॉक्टर है नहीं यहाँ, और ना अपन अपने मन से कोनू भी दवाई ले सकत, ना अपन कोनू भी अपने मन से फल खा सकत हैंगे, क्योंकि अपनो इलाज जो है भी डॉक्टर कर रहे हैंगे। तो डॉक्टरन को कहेगो के भी सही तरीका से आपको बता सकते हैंगे कि आपकी सेहत के लाने आपको शुगर की समस्या हैगी, तो उके लाने कौन से फल आपको ज्यादा जरूरी हैंगे जो आपको खाए चाहिए। ठीक है, तो जा तो हो गई साथी हरो सेहत के साथ ही हैंगे मौसम के फल। आगे हम आपको बता देवे कि योग भी अपने लाने जरूरी है, वजन को नियंत्रण रखवो भी अपने लाने जरूरी होते गो। जैसे कि अगर बात करें कि अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतन के चलत वह वयस्क ही नहीं बल्कि किशोर भी मोटापे को शिकार हो रहे हैंगे। साथियों योग के ई आसन को नियमित अभ्यास करके आप घटा सकते हैंगे वजन और शरीर की अतिरिक्त चर्बी और वजन को कम कर सकते हैंगे, उनको नियंत्रण में रख सकते हैंगे। तो आसन को जो नाम है वो धनुरासन है गो। इखो करबे से पूरे शरीर सक्रिय होते गो, ऐसे वजन घटबे के संगे अन्य शारीरिक जो समस्याएं होती हैंगी उनको भी जो दूर करत है गो। धनुरासन से स्थूलता दूर होते हैगी और शरीर को सही आकार मिलत है गो। इखो करबे के लाने साथी यारो आपको उपाय करने है, क्योंकि बहुत सारे श्रोतान को हमारे जो नहीं है पदों के धनुरासन किसे कहेंगे तो हम आपको बता देवे, आप जब प्रक्रिया कर सकते हैं। साथियों इखो करबे के लाने पेट के बल आप लेट जावे और आपके जो पांव हैंगे उनको कछु दूरी पे और दो हाथन को सीधो रख लेवे। अब घुटनन को मोड़ के कमर के पास ले जावे और अपने तलवन को दो हाथन से पकड़ लेवे। इसके बाद सांस लेत भय छाती को जमीन से ऊपर उठावे और पांव को आगे की तरफ खींचवे। अब शरीर को संतुलित रखत भय सामने की ओर देखवे। लगभग आपको जो 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़त भय पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आने है गो। और आपको बता देवे कि जो आसन तनक कठिन है गो, लेकिन आप धीरे धीरे इखो नियमित रूप से अगर अभ्यास करो तो आप अच्छी तरह से इखो कर सकते हैंगे। और अच्छी बात तो जा हुज्जे के कोई ऐसी व्यक्ति के सामने आप करवे जिखो इन सब आसन के बारे में जानकारी हुए, जो को जानत हो, या फिर आप आसान सो तरीका जो भी अपना सकते हैंगे कि कई सारे वीडियो भी आसन के डरे रहेंगे, योग के डरे रहेंगे, तो आप भी देख के ये आसन को आसानी से कर सकते हैंगे। इखो करवे से कमर और पेट के ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की चर्बी जो है आपकी घट लगाते हैं कि घटवा शुरू हो जाती। तो साथी भैया रो आज के कार्यक्रम में बस इतने ही कहे कि अपन ने जान लो है गो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल, और अपने वजन को संतुलित यानी के नियंत्रित रखवे के लाने योग भी अपने लाने जरूरी है। ये सब बातें अपन ने जानी हैंगी। अब अपना समय भी हो रहा होगा आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से जाबे को। तो जो कार्यक्रम आपको कैसा लगो हमें जरूर बतावे फोन के माध्यम से, चिट्ठी पत्री भी हमें लिख सकते हैं। तो उके लाने अपनो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। आप साथी हरो आपको बता देवे कि देखो काम बहुत तेज पड़ रहा है गो भैया हरो, ध्यान रखो, अपनो रखो, अपने घर के बुजुर्गन को रखो, अपने घर के जो बाली बच्चा हैंगे उनको भी ध्यान रखने है गो। ऐसे में पानी आप सबसे ज्यादा पियत रहे, पानी में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करवे। एकाएक से जब आप धूप से आउट हैंगे तो कूलर की हवा में या एसी की हवा में बिल्कुल ना जावे। जब काकेती तनक देर बाहर बैठ लेवे नॉर्मल सी हवा में, उसके बाद ही आप कूलर या काकेती एसी में जावे। और जो ही नियम आपको जब करने हैं गो जब आप एसी या कूलर से बाहर निकलत हैंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप एसी में मान लो बैठे हैंगे बिलात देर से और आपको बाहर जाने हैं कछु काम से, तो आप का करो कि तनक देर पहले नॉर्मल जैसी जगह पे बैठ जावे जिते कूलर पंखा ना चल रहा होवे, तो उतने बैठ जावे, उसके बाद आप

बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करने हैं कि आपको सर को हमेशा ढक के रखने हैं गो, आंखन पे चश्मा लगाने हैं गो, और हो सके तो हाथन में ग्लेप्स भी पहन लीवे। अगर हमारा भैया गाड़ी से कितना जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से, तो हर भैया आपको जो है तौलिया या गमछा को इस्तेमाल तो करना ही है गो, ढक भी खिलाने मुड़ी, संगई में हेलमेट भी आपको लगा के जाने है गो। ठीक है, आज के कार्यक्रम में बस इतनी गई, फिर मुलाकात हो जाए आपसे अगले कार्यक्रम में। आप अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई है एक नए विषय के संगे, तब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके प्रिय रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत कल्याण में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और खेत कल्याण कार्यक्रम में मित्रों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं, हम अपने किसानों को नई नई जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेत कल्याण में हम तीन बातों पर इस जिक्र करेंगे। आज पहला सेगमेंट होगा, वो होगा हमारे किसान साथियों के लिए कि वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, खासतौर पर पेड़ के अगल बगल हम किस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट होगा सीप, आपने सुना होगा, यानी मोतियों की खेती हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। और एक सफल किसान जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत आपकी कराएंगे। तो आप सुनिएगा हमारा कार्यक्रम खेत कल्याण में इन तीनों सेगमेंटों को, बने रहिए आपके आरजी मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।
1: बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले है। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुँच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखे। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ

0: मिट्टी के जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और मित्रों, अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपने खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खासतौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे। और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुक कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुक करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने यह घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और साथियों, अभी आपने बनवाली वर्मा और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से खेती किसानी से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं इस भाग को और जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों की खेती कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
1: मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण

0: जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहाँ सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनस मार्जिनेनस, लेमिनेनस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पेट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम खेत कल्याण में मौसम की जानकारी का। तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। तो ये जानकारी दी जा रही है वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उर्द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लिड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी की पलटने वाले हल से

0: कर दें ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सकें तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोरोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दूवर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरम फास 40 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो 6.0 ग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी एवं फिनोरोफिक्स 5.0 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। शिमला मिर्च में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव हेतु बाप्स्टीन दवा की 2.0 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की, ये जानकारी दी जा रही थी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को।
1: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब 1 घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
2: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के

0: में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है। सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है, 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और इसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगो कर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का ईसी और पीएच है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाए, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पोली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जीवन भर सुख

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में आपके अजय मनीष और साथियों। अभी आपने सफल किसान की इस कहानी को सुना, ये राजस्थान की कहानी थी। उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि आप भी जैविक पद्धति से खेती करिएगा और मुनाफा कमाइएगा, और तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे। अब साथियों वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो साथियों कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की इजाजत, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और आज विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन मिले भैया विजय सिंह घोष जी से, जो उज्जैन पठा के रविवाय हैं। और उनसे जाने के गावे बजावे में इनने रुचि अगर लई है तो का इनने गाव है। सो दोस्तों, अपन भैया विजय सिंह घोष जी से मिलें और संग में मिलें सुल्तान सिंह मंत्री जी से, जो विजय सिंह भैया जी के पिताजी हैं। उनसे भी अपन बात करें कि पहले खेती में कैसी खेती होता थी और का इनके गांव में सुविधाएं चल रही हैं और कौन सी समस्याएं से जो जूझ रहे हैं और कौन से पहला अनाज होता थे, ये सारी बातें अपन भैया सुल्तान सिंह जी से भी करें। सो दोस्तों, अपन पहला तो एक बढ़िया से गीत को सुन लेते हैं और गीत के बोलन को आनंद लेते हैं, और ये गीत के बाद फिर मिले अपन भैया विजय सिंह घोष जी से और सुल्तान जी से। सो दोस्तों, आप ऐसी बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

0: डाली वो तने कर धनिया है भर वे गए पनिया डाली वो तने कर धनिया है भर वे गए पनिया डाली वो तने कर धनिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, गईती का धनिया डारी किते कर धनिया। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और संगे गा रही थी रेखा राज जी। अब दोस्तों यही गीत के संगे संगे अपन फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ। तो कार्यक्रम में मिले थे अब अपन विजय सिंह घोष जी से। सो भैया जी से जानते थे कि इनने गावे बजाए भी में काशी को तो जे का गाऊ थे। सो दोस्तों आओ देर ना करा तो भाई अब मिलते हैं भैया विजय सिंह घोष जी से।
2: अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम पता बताओ।
3: विजय सिंह घोष ओजियान।
2: विजय सिंह घोष ओजियान से। अच्छा विजय सिंह भैया, अपन गावे बजा में रुचि रखत का?
3: ओ, हम गाँव सुना सुना थे जाते हैं, उतना रुचि भी है हमें।
2: रुचि है जब तो आप गाँव थे। आ, मतलब रुचि है।
3: रुची
2: अच्छा
3: है।
2: आपने काशी को काय में रुचि ली? आपने
3: हमने आला में।
2: आला में रुचि ली।
3: अच्छो हमें लगो जो बुंदेलखंड को अच्छी वो ये गावे में आनंद भी आओ तो जोश भी आओ।
2: अच्छा जोश आउती है। बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आला में जोश है, मतलब जोश वाली कहानी है आला की। तो आपने में कौन सी भाग खुशी को काशी कोई में आला में?
3: हम शुरू में इसे बता रहे भाग सुन लो।
2: बिल्कुल सही बात है।
4: अरे देवी समुरा समर वाली काली कंठ बैठ के लिकार चरण से नाऊं तुम्हें मनाऊं जाऊं बार बार बलिहार फूलमती कनवज की देवी मेटो जाए भरम को जाल ले और लखनिया कचरन वाली गोरा पार्वती के लाल कठिन पावड़े रण वांगन के सुनियो हाल नरेशन क्यार जैसा स्वर कोयल को दीनो बेटी भूले आम की डार सोईश्वर मैया हम मांगते हैं भासत विजय बना फर क्यार आला उदल को साखो है जो को सुने सिंह हो जाए ओ फुलवा गति सती जस पाई गाई चंद भाटी कविराय जैसे गवैयन पे सुन पाई भैया सोई रहे हम गाय ओ छूट सुमरनी गई सूरन की शरण सती सूर मन क्यार सूर भुजा के जोर से जो चाहे कर ले सत्वती चाहे तो कया पलट कर दे कर तारे की धरती ऊपर कर दे।

अनहोनी के करे बयान, तीन बात पे इस दुनिया में हो गए महाविकट संग्राम, और धंधर तीसो तन की बासी और पराई नार। प्रथम लड़ाई भाई त्रेता में रावण हरि राम की नार, दूजी लड़ाई भाई द्वापुर में बिरधर कुरुक्षेत्र में धान, तीजी लड़ाई भाई कलयुग में सो बेला हित करो मैदान। पांच पांडवा सीज हमारे

0: दीने प्रीत निभाए। तीन बाण तिरथी हने जल हन मारी सांग, धांदू हन से ला दो फटी दाहिनी जांग, फटी दाहिनी जांग चौड़िया गासी मारी, कर गटियारी देव सिंह ने और मैं हनी कटारी, लाखन के मन बस रहे मित्र उदय सिंह राय, लाल वरन हो दाबो बोरहाई मन पछताए, के बिला रानी के बोने में मारे गए कनौजी राय, कावने लूटी पाग पेजनी कावने कलगी लही छड़ाए, उदल जब पाई खबर टूट गई सब आस, मोए भैया सुबहे गए मित्र के पास, के आस लड़ैया तिलका वाले ममित दीने प्राण गंवाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपने।
2: हाँ देखो दोस्तों, ये तो आते भैया विजय सिंह घोष जी, इनने अपन सब जन को जो आला गाके सुनाओ है, सो इके लाने भैया विजय सिंह जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक क्रम में आप और कह रही हो कि माता दिन भैया विजय भैया जी की बातन में लगे हैं और आला सुनबे में लगे हैं और गीत की ओर कोनो ध्यान नहीं कर रहे, मनोरंजन नहीं करवा रहे गीत से। सो दोस्तों गीत के लाने आप सब जन के लाने हम गीत ले आए हैं और गीत आप सुनो और गीत को हम सुने। सो आप सुन लेते हैं प्यारे से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों ये गीत के बाद मिले अपन फिर भैया सुल्तान सिंह जी से।

0: बिल्कुल दोस्तों, किते जा रही धना तुम दुपहरिया में। देखो कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया मनोहर सिंह यादव जी। और दोस्तों अब भैया मनोहर सिंह यादव जी के गीत के बाद आप मिले थे अपन सुल्तान सिंह मंत्री जी से। सो दोस्तों अपन सुल्तान सिंह मंत्री जी से मिले हैं और उनसे चर्चा करें। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: अच्छा दादा, पहला तो आप अपना नाम पतो बताओ। हाँ पूरा बिल्कुल नाम अपनो पतो अपने गांव को।
2: उजियान।
1: आपके गांव को उजियान।
2: उजियान।
1: और अपनो नाम?
2: सुल्तान सिंह मंत्री।
1: सुल्तान सिंह मंत्री।
2: हाँ।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मंत्री जी, आपको नाम सुन के तो ऐसे लग रही जैसे पुराने जमाने में अपन लौट गए हो। गए कहे के जब राजा रहते राजशाही जमानो चलत, तो जब उमे मंत्री होते।
2: हाँ।
1: ठीक। सो ये हिसाब से हमें ऐसे लग रहा हो कि हम पुराने जमाने में लौट गए हो, तो अपन बात काहे ना पुराने जमाने कर ले। तो अच्छा, अब जब अपन छोटे हते तो आपके जमाने में अगर खेती की बात करें या फिर अपने रीति रिवाजन की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें, तो पहला का गाओ जा तो कैसे गाओ थते और का बजाओ थते उमे?
2: तो खेती रिवाज से कर लो, शुरू से
1: रिवाज से करो।
2: खेती रिवाज को जो है तो
1: हाँ।
2: पहला कोई साधन हती नहीं।
1: हाँ।
2: तो अपने हाथ से तरसा।
1: हाँ।
2: और दो बेलन लुभती कोर पड़ाव बोलती।
1: अच्छा, कोर पड़ाव।
2: हाँ शुरू से।
1: हाँ।
2: उसी से खावे लाख पिसी होती और चना जोड़ाई होती।
1: जी होती।
2: जी होती।
1: खावे में तो जो चलत रहते
2: जो चलत रहते तो, और थोड़ी खेती और भैंस गंजा रखे रहते, उसे घी से पहला दूध बिकत नहीं है तो दूध की बिल्कुल भी असर नहीं होती हमारे टाइम। फिर धीरे धीरे समय आओ सो दूध बिकन लगो। और जो ये सो समय आ गो कि थोड़ी समय बाद जल्दी बाल बच्ची भाई सो ट्रैक्टर बारी हो गई।
1: अच्छा, ट्रैक्टर बारी हो गई। अच्छा जा बताओ कि उबेरा पे नाच कौन कौन से होते खावे में, रोटी खाए का खाते?
2: पुराने समय में ज्वार।
1: हाँ।
2: चना और कठिया गेहूँ बोलत, गेहूँ देसी।
1: हाँ।
2: गेहूँ बोलते।
1: हाँ।
2: देसी गेहूँ।
1: हाँ।
2: और जवा और चना जी खेती होती हो रहा है। यह सो समय पर जात तो कि चना जुड़ाई खाने पर
1: खाने पड़ती।
2: पिसी तो होते ही नहीं हती, कम जित एक कोर पर ऐसे कर ले
1: कर ले
2: भाई पिसी।
1: और पिसी की रोटी कौन भी आप कबूतर

0: त्योहार पे,
1: जैसे त्योहार आ गए रिश्तेदार आ गए तो खुशी भाई, जब हल्के बाल बच्चे के आप तो रिश्तेदार आ गए तो आज घर भर को हो सकत किसी की रोटी मिले।
0: अच्छा आपको वो ऐसी ध्यान है कि आप जब छोटे हते आपकी माता जी ने कहियो कहे तेरंदे तेना खावे जब किसी की रोटी, जब फलाने रिश्तेदार की लाने रही अंदे या फिर फलाने जाने रिश्तेदार,
1: जब रिश्तेदार खा जाए जब परिवार में बच्चन खो मिलती
0: ऐसे
1: अबे ना खाओ और जब रिश्तेदार खा जाए सुई के बाद बच्चन खो दे जाए
0: ऐसे
1: जो वो समय तो वो समय देख लो।
0: अच्छा पिसत कैसे है तीन जी नाच को,
1: हाथ की चक्की से,
0: चकिया से
1: हाथ की, फिर वो समय एक ठुक ठुक लगी थी।
0: अच्छा
1: सो को जा रहा हो अब बंगल मिठिया चार बजे रात से और बल्कि तीन बजे से उठ बैठी जी के घर में 10 आदमी है तो उन्हें 10 किलो नाच पीसने
0: सही कह रहे
1: पीस रही और फिर टेम पे उठ बैठी का पानी भरने कोई ऐसे साधन आते के घर पानी पी लो।
0: अच्छा जब नहीं आते
1: कोई साधन नहीं तो दूर कुगा गांव में एक कुगा नहीं आती।
0: अच्छा
1: दूर कुगा कम से कम हमारे उद्यान में 1 किलोमीटर लगत तो कुगा पे आवे जावे में।
0: अच्छा
1: पानी पियावे में कष्ट हो तो कहू को धर मांगो तो पानी नहीं मिलता।
0: अच्छा
1: हम स्कूल में पढ़े और काउ के थे पानी को गए तो नदी को पानी पिया कुगा को तो पिया नहीं पाओ।
0: अच्छा
1: हाँ जहाँ हालत थी पहला।
0: अच्छा पहला और अब की अगर बात करें तो अब क्या व्यवस्था है आपके गांव में पानी की?
1: अब व्यवस्था टंकी लग गई और जेठ लगे और मतलब बोर करा लाए।
0: अच्छा बोर करा लाए
1: हाँ, अब सब सुविधा जोन पान मांगो वो नदी को तो अब मिलता ही नहीं है अब कुओं को।
0: अच्छा तो व्यवस्था गांव वालों ने या फिर अपन ने अपनी तरफ से करी
1: हाँ।
0: अगर बात करें अपन शासन की सरकार की तो सरकारी व्यवस्था है ऐसी कोनों के जो गांव में हो गए नल लगे हो गए या पानी की टंकी बनी हो?
1: नल लगे हो बस अकेले पानी की टंकी एक लगी है सरकार ने 10 फीट उद्यान में हमारे तो भाई भी नंजा छिड़का पे
0: तो सरकारी हैंडपंप लगे
1: सरकारी एक नंजा हमारे गांव में।
0: अच्छा
1: उनने करी थी बोल के 100-125 फुट कोई पानी नहीं है।
0: अच्छा पानी नहीं निकलते
1: एक बोरन में 4-6 बोर करी सरकार ने उसी एक हिसाब से बोल नहीं भाई ना तो पानी कर
0: सही बात कह रहे। अच्छा अब यही क्रम में अपन बात करें रोड की तो रोड की क्या व्यवस्था है आपके?
1: रोड हमारे ते डरो बेकार हम और अनखो बड़ी मुश्किल में गिरो तो रोड।
0: अच्छा
1: बहुत दिक्कत सो उखड़ो डरो शासन सुनाई नहीं रही अब
0: चलो जाता रोड की हो गई। अब एक क्रम में अपन करें स्वास्थ्य विभाग की तो जैसे कभी रात बेरात कभू गाँव को कछु प्राण दुखन लगो तो इकेला निकलते जाते गाँव में है क्या व्यवस्था?
1: गाँव में है व्यवस्था ऐसे डॉक्टर है
0: टेम्परेरी टाइप
1: टेम्परेरी के कहो भी दे रहा है बुखार की नहीं दे रहा।